0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 VTEI।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, RESP ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला

क्या बात है, केस जीत गए तेरे तो दिल हारे, मां दी है मोमबत्ती है मां दी है मोरनी है। क्या बात है, जदों बंदा गाना गाँदा विच विच मां दी है मोमबत्ती है भी गाना बलकार सिद्धू दा याद आ जांदा, बड़ा शानदार गीत। ते प्रोग्राम सर्ब रेडियो ते नाल दी नाल फिर तुहाडा हुण फायदा भी करवाइए यार, फायदा इस तरीके नाल कोई भी असीं काम कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं ते लभ रहे हैं यार इनकम किवें वधाईए सैकेंड कैरियर दे लई, सानू की कुछ हैल्प गवर्नमेंट कर रही है, कोई ग्रांट कोई

0: क्या बात है जी, बड़ा शानदार गीत सुरजीत खान दे वालों ये गाया होया। ते उस तो बाद हुण चलदे आ साडे नाल लाइन दे उपर, एक बार फिर जुड़ चुके ने सारांश जी फ्रॉम यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो। सारांश जी वेलकम।
1: फिर सत श्री अकाल जी। एंड देन लाइक सिर्फ यही वीक रह गया है, सिर्फ टेक्निकली दो दिन रह गए हैं, मंडे एंड ट्यूजडे। आपने अगर अभी तक स्किल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग अप्लाई नहीं करा है तो आप बहुत चीज मिस कर रहे हैं। 30,000 to 100,000 की फंडिंग गवर्नमेंट आपको आपके खाते में दे रही है, जिसका मेजर पोर्शन तो ग्रांट्स है। आसान से कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन, घर पे घर के कंफर्ट से करें। नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, एग्जामिनेशन नहीं है, फुली ऑनलाइन है। और लाइक आसान सी असाइनमेंट्स हैं, तो क्रेडिट चेक इसके अंदर नहीं होता, फंडिंग आपके खाते में आती है, हमारे खाते में नहीं आती। कोई चाबी कोई मीठी बातें नहीं है इसके अंदर। 8 साल से बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं, प्रॉपर ऑफिस है, 8 एम्प्लॉइज आपके लिए काम कर रहे हैं, हर टेरिटरी पे ऑफिस है। आप मंडे आ सकते हैं, फैमिली ऑफ फोर को अप टू 80,000 की फंडिंग बन जाती है। हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, आसान से कोर्स करते हैं, जिसमें से 40,000 तो नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स है आज की डेट में। जो रेस्ट पोर्शन है $40,000, 0% पे ऑप्शनल लोन। जितना फैमिली साइज ज्यादा, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, फैमिली साइज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, इनकम कम कम कम है आपकी नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, सच है। सेल्फ एम्प्लॉयड, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है, अच्छा बेनिफिट है जी, कोई चाबी नहीं है इसके अंदर। और हमारी फीस काम होने के बाद $199 या $499 है। हमारी नजर हमारी गुल्लक पे, आपकी मोटी फंडिंग पे नहीं है, कोई लालच नहीं है हमारे अंदर। तो कॉल करें, ऑफिस आए, ये कोई जुआ नहीं है कि पैसे आ सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं है ये, या ऐसा भी नहीं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है कि मरने के बाद पैसे मिलेंगे। अब आज कोर्स स्टार्ट करते हैं, 30 to 90 days में आपके खाते में पैसे आ जाते हैं गवर्नमेंट से डायरेक्ट। ऑफिस आए, नंबर नोट करें, कॉल करें, 437-234-31-75, 437-234-31-75। उन्हें कॉल करो, एस्टिमेट लो, 437-264-3175, 437-234-31-75। आपकी गवर्नमेंट जब लाइक $60 billion गवर्नमेंट का डेफिसिट है लास्ट ईयर का, $30 billion तो यूक्रेन को दे दिया, $2 billion आप पे लगा रही है एजुकेशन फंडिंग में, तो कोई चाबी नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, इसको लें, इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्रांट्स बंद होने वाले हैं। 437-234-31-75, 437-264-3175।
0: क्या बात है, 437-234-31-75, 437-264-3175, 437-264-3175। ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 218 ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਲੇਵਰਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੇ ਡੈਰੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਓਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ GNE ਮੋਰਗੇਜਿਸ ਦੇ ਮਯੰਕ ਪਟਨਾਗਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, 647-702-2023, 647-702-2023, 647-702-2023। ਤੇ ਸੂਟ ਲਹਿੰਗੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਜਾਮੀ ਲੌਂਗ ਡਰੈਸਿਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਗਰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੇਅਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਹੈਂਡਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, SUKH.designer.boutique, ਸੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੁਟੀਕ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰੈਸਿਸ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 647-203-3365, 647-203-3365। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਬ ਰੇਡੀਓ 647-770-6454 ਤੇ 647-770-6454। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

जिनके मनो से आवाजी शब्द कनेरी कह नाम सच्चे साहब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया ए वड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो मेरा आधारो वाजी पंच शब्द तिद घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजी कला जित कर धारिया पंच दूत तुदवास कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तू जिन को से नाम हर कह लागी कह नानक तहस पोआ तिद घर अनहद वाजी।

0: माया कमाउनी दिन की जंट बोली पाईया कुर्बान कीता इस जिनम मिठा लाया कह नानक माया पाया
1: विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455-7333 कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस
2: ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ

0: ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਮਾਂਦੇ ਆਦਮ
1: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिडोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।

भारत गुर ते पाया भक्तां की चाल निराली चाला निराली भक्तां केरी बिखम मार चलना लाभ लो अहंकार का जित तृष्णा बहुत नाही बोलना कन्यो तिखी वालों ने की मार्ग जाना गुरु प्रसादी जिने आप तजार वासना समानी कह नानक चाल भक्तां जुग हो जू निराली ज्यों तू चला है तिव चले स्वामी और क्या जाना गुर तेरे जीव तू चला है तिव चला जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन्ना मिलाए से हर सदा त्यावे जिसनों कथा सुनाए अपने।

सुखपन्ना सदा भवस्या कवचम् देवतावासं वज्रपरिजरसौद्यकम् शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॐ श्री शनैश्चर पातु पादं मे सूर्यकन्दरा मे रे छायात्मजः पातु पातु पर्णौ यमानुजा नासाय स्वतः पातु मुखं मे भास्कर सदा शीलकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्दौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदा वक्षं पातु यमभ्राता मुख्यं पार्वसिनस्तथा नारीन्द्रपते पातु

कृष्णकुशलाभं चिरोदारणं संभवं नमामि शशिनं सोमं संभोर्मुकुटभूषणं।

नमस्ते श्री कुल देवी कुल आराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलाम्बा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्वबंधम महाघोरम त्राही माम शरणागतम त्रैलोक्य हृदयम शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुल देवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुल वृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतं चिदग्रीमण्डल सम्भूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वन्दे त्वं राजगौरवं त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वत्मत्सलोऽहं बाध्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी श्रीकुलदेवी स्तोत्रम् श्रीकुलदेव्याः अर्पणम्।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तो आते इन्ने साला दे परोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स उन तीन लोकेशंस तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1135-016-213-1165।
1: जी हाँ, तो आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। और बहुत ही बढ़िया से मौसम है आपके लिए, तो अभी बरसात के भी थोड़े आसार हैं, पर बरसात के जो थोड़े से आसार हैं वो थोड़ा आपको रिलीफ देने के लिए है। गर्मी ज्यादा होती है तो फिर बीच में आपको थोड़ा ब्रेक मिलनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए, तो छतरी तो जरूर होनी चाहिए। जब अगस्त का महीना भी, जुलाई का महीना भी खत्म होने वाला, 7 महीने साल के निकल गए हैं, कैन यू इमेजिन, टाइम ऐसे हाथ से सरकता जा रहा है। तो आइए प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कोलिजन रिपो आपके लिए बहुत बढ़िया आपके लिए सर्विसेज देते हैं, बहुत सालों का तजर्बा है। तो लंदन में गोर रोड पे उनकी लोकेशन है, आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो में जाइए और उनकी सेवाएं लीजिए। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेना चाहते हो, किचन की गैजेट्स आपको बढ़िया वाली चाहिए और आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा सामान आपके लिए मिलता है। कहाँ मिलता है? जी हाँ, तो ये सारा सामान टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटरमॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए। अगर आपने राखी पे अपनी बहन को बढ़िया सा गिफ्ट देना है, टीवी बढ़िया सा देना है, तो आप अभी से बुकिंग कर लीजिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपको बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपको बड़ी बढ़िया सर्विसेज देंगे और आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाएंगे। तो आप कॉल कर लीजिए, ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-4 416-524-4 पर आप कॉल कर सकते हैं HK मूवर्स। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको खाना ऑर्डर करना है, मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है, या फिर लाइव कुकिंग करवानी है, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे। तो और जानकारी के लिए 905-814-1780 पर कॉल कर लीजिए, 905-814-1730 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं कटी पतंग फिल्म से, लेट्स गो टू किशोर कुमार का गाया हुआ लता जी का।

हम झोली खेलेंगे हम होली खेलेंगे हम होली चाहे दीगे चाहे दीगे तेरी सुनरिया चाहे दीगे रे चोली खेलेंगे हम होली होली।

क्या करेगा जमाना, ओ तुम हो कितनी आएंगे बस हम होली खेलेंगे, हम होली खेलेंगे, हम होली।

में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये जो गाने हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हो 647-773-7640। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हमें मैसेजेस सेंड करते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो जुड़े करते हैं तो कुछ इस तरह भी हो जाएगी। तो पहले आपको बता दें, अगर लंदन में रहते हो, आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको बड़ी बढ़िया सेवाएं देंगे मास्टर कोलिजन डिपो वाले, तो कोर रोड में मौजूद है लंदन में। अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पे जाकर आप और जानकारी ले सकती हैं। तो आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज देंगे। अब अगर हमने मूव होना है तो HK मूवर्स आपके लिए होने के लिए किस्मान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही बुक कर लीजिए 416-524-804 416-524-6704। अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, बढ़िया प्राइस में लेके आना चाहते हो, तो ये सारा कुछ आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन इनकी ग्वाल में है। और आप अगर बढ़िया टीवी लेना चाहते हो, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आपको ये सारा सामान मिलने वाला है। तो आप अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से साथ।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत। आपको तो याद होगा कि वहाँ पे वृक्षों के ऊपर वो जो बड़ी सी रस्सी होती है उसको बांध करके सभी झूले डालते हैं और फिर सभी बार बार झूलते हैं, तो लड़कियाँ सभी इकट्ठी होती हैं तो झूला झूलती हैं, और यही तीयां का मेला भी यहीं पे उसी का सभी सहेलियों के पास इकट्ठी होती हैं तो अपना फन करती हैं। तो आइए, अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया सर्विसेज 416-524-604 416-524-6704। आप किचनर वाटरलू गल्फ में घर खरीदना बेचना चाहते हो तो वो नसीब फिल्ड को कॉल कीजिए, बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, हाईली प्रोफेशनल। तो 519-542-1260 519-546-1260।

0: हाँ, तो एक बार फिर सब आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अब आपके लिए बहुत बढ़िया सा गीत मैंने चुना है। तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया गैजेट्स आपको किचन के लिए चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है, तो आप अपने उनकी स्पेशल देखो topchoiceelectronics.com। तो फिर अपने ऑर्डर बुक करो 905-749-0045-7999-0045 तक। तो अब आपके लिए गाने हैं, ये जो गाना आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ है बहु बेगम फिल्म 1967 से। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।
1: में भी अपना मजा होता है।

में बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है। तो अब आपको थोड़े नए वाले गाने में ले चलें, क्या ख्याल है? बहुत सारे नए गाने भी हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं, तो आप उनको कॉल कीजिए 416-524-8404-16-52-46-704। आपको ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर टायर सेंटर 1715 सिस्मत रोड पे मौजूद है। तो वो बहुत बढ़िया आपको सर्विस देते हैं। तो 1715 सिस्मत रोड मिसी सागर में मौजूद है। तो अब अगर आपने किसी तरह के भी ट्रक रिपेयर करवानी है तो आप 905-625-0055 पर कॉल करो, 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हैं। तो आपको अगर तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी लेना है, किचन गैजेट है, तो और करिए 905-700-0045 पर कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटी।

तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, आई मीन हैव अ वंडरफुल वीक। सो एंजॉय दिस सॉन्ग, नानक राम चड्ढी कला तेरे पानी स्वादा पला।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਮਾਂਦੇ ਆਦਮ
1: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400।

ते पाया भक्त की चाल निराली चाला निराली भक्त तेरी दिख मार चलना लभ लो अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना कन्यो तिखी वालों ने की मार्ग जाना गुरु प्रसादी जिने आप तजार वासना समानी कह नानक चाल भक्त जुग हो जू निराली ज्यो तू चला है तिव चले स्वामी और क्या जाना गुर तेरे जीव तू चला है तिव चला जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन्ना मिलाए से हर सदा त्यावे जिसनों कथा सुनाए अपने।

नमस्ते श्री कुल देवी कुल आराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलाम्बा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्वबंधाम महाघोराम त्राही माम शरणागतम त्रैलोक्य हृदयम शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुल देवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुल वृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतम चिदग्रीमंडल संभूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वंदे त्वं राज गौरवं त्वदीये कुले जात है त्वामेव शरणं गत है त्वत्मत्सलोहं बाध्ये त्वं रक्ष रक्षा धुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी श्री कुलदेवी स्तोत्रम् श्री कुलदेव्या।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 016-213-1165

0: 5580 Aldun Road, Etobicoke. वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1135
1: जी हाँ, तो आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। और बहुत ही बढ़िया से ये मौसम है आपके लिए, तो अभी बरसात के भी थोड़े आसार हैं, पर बरसात के जो थोड़े से आसार हैं वो थोड़ा आपको रिलीफ देने के लिए है। गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर बीच में आपको थोड़ा ब्रेक मिलनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए, तो छतरी तो जरूर होनी चाहिए। जब अगस्त का महीना भी, जुलाई का महीना भी खत्म होने वाला, 7 महीने साल के निकल गए हैं, कैन यू इमेजिन, टाइम ऐसे हाथ से सरकता जा रहा है। तो आइए प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कोलिजन रिपो आपके लिए बहुत बढ़िया आपके लिए सर्विसेज देते हैं, बहुत सालों का तजर्बा है, तो लंदन में गोर रोड पे उनकी लोकेशन है। आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो में जाइए और उनकी सेवाएं लीजिए। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेना चाहते हो, किचन की गैजेट्स आपको बढ़िया बड़ी चाहिए, और आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा सामान आपके लिए मिलता है। कहाँ मिलता है? जी हाँ, तो ये सारा सामान टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटरमॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए। अगर आपने राखी पे अपनी बहन को बढ़िया सा गिफ्ट देना है, टीवी बढ़िया सा देना है, तो आप अभी से बुकिंग कर लीजिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपको बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपको बड़ी बढ़िया सर्विसेज देंगे और आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाएंगे। तो आप कॉल कर लीजिए, ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए, 416-524-7704 पर आप कॉल कर सकते हैं HK मूवर्स। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको खाना ऑर्डर करना है, मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है, या फिर लाइव कुकिंग करवानी है, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे। तो और जानकारी के लिए 905-814-1703 पर कॉल कर लीजिए, 905-814-1730 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं कटी पतंग फिल्म से, लेट्स गो टू किशोर कुमार का गाया हुआ लता जी का गाया।

तोड़ेंगे बदाम डोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली।

करी का जमाना ओ तुम कितनी भी आएंगे बन हम होली खेलेंगे हम होली खेलेंगे हम होली।

संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये जो गाने हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हो 6477737640। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हमें मैसेजेस सेंड करते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो कुछ इस तरह भी हो जाएगी। तो पहले आपको बता दें, अगर लंदन में रहते हो, आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको बड़ी बढ़िया सेवाएं देंगे मास्टर कोलिजन डिपो वाले, तो कोर रोड में मौजूद है लंदन में। अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पे जाकर आप और जानकारी ले सकते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज देंगे। अब अगर हमने मूव होना है तो HK मूवर्स आपके लिए होने के लिए किस्मत को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आज ही बुक कर लीजिए 416-524-704-416-524-6704। अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, बढ़िया प्राइस में लेके आना चाहते हो, तो ये सारा कुछ आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन इनकी ग्वाल्फ में है। और आप अगर बढ़िया टीवी लेना चाहते हो, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट तो चाहिए, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आपको ये सारा सामान मिलने वाला है। तो आप अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से साथ।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत। आपको तो याद होगा कि वहाँ पे वृक्षों के ऊपर वो जो बड़ी सी रस्सी होती है उसको बांध करके सभी झूले डालते हैं और फिर सभी बार बार झूलते हैं, तो लड़कियाँ सभी इकट्ठी होती हैं तो झूला झूलती हैं, और यही तियां का मेला भी यहीं पे उसी का सभी सहेलियों के पास इकट्ठी होती हैं तो अपना फन करती हैं। तो आइए, अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया सर्विसेज 416-524-7604 आप किचनर वाटरलू गल्फ में घर खरीदना बेचना चाहते हो तो वो नसीब फ्रेंड को कॉल कीजिए, बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, हाईली प्रोफेशनल। तो 519-542-1260 519-546-1260।

0: हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अब आपके लिए बहुत बढ़िया सा गीत मैंने चुना है। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप नए फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया गैजेट्स आपको किचन के लिए चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है, तो आप अपने उनकी स्पेशल देखो topchoiceelectronics.com। तो फिर अपने ऑर्डर बुक करो 905-749-0045-7999-0045 तक। तो अब आपके लिए गाने है, ये जो गाना आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ है बहू बेगम फिल्म 1967 से। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।
1: में भी अपना मजा होता है।

बहुत ही ऐसा स्वागत है अभिनंदन है। तो अब आपको थोड़े नए वाले गाने में ले चलें, क्या ख्याल है? बहुत सारे नए गाने भी हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो एचके मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं, तो आप उनको कॉल कीजिए 416-524-4416-524-6720-4। आपको ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर टायर सेंटर 1715 सिस्मत रोड पे मौजूद है। तो वो बहुत बढ़िया आपको सर्विस देते हैं। तो 1715 सिस्मत रोड मिसिसागा में मौजूद है। तो अब अगर आपने किसी तरह के भी ट्रक रिपेयर करवानी है तो आप 905-625-0055 पर कॉल करो, 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हैं। तो आपको अगर तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी लेना है, किचन गैजेट है, तो और 905-700-0045 पर कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल।

तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, आई मीन हैव अ वंडरफुल वीक। सो एंजॉय दिस सॉन्ग, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी स्वाद दा पला।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे, जो किश करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे, हर आपे पंच तत् विस्थारा, विच तत्तु पंच आप पावे, जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे, हर आपे पंच तत् विस्थारा, विच तत्तु पंच आप पावे, जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया, क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

0: टॉयलेट जरूर वरतांगे इसलिए हुणे कॉल करो असी वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी शायद
1: अपने परिवार दी रक्षा करो सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ओ ईएसए परमिट हासिल करन होर जानन लई hirelicense.ca ते जाओ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: मेरे रब जी, मेरा बिजनेस नहीं ये चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव तात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
2: भाई बन के की आई हैं? लाल झग्गा पाया भाई साहब, तितलियां वाला उत्ते सिर ते क्लंप जा लाया, की चक्कर की है?
3: अंडरलाइन
2: होनी नजर नहीं आ रही, जिनी अपर लाइन नजर आ
3: रही।
2: मेनू क्यों लग रहा है भी रात कदे सुती नहीं, या फिर पीती ज्यादा हो गई, सवेरे उगड़दी नहीं सी, इस करके तू जान बुझ के सुरमे ना बनाई के मतलब पता लगे भी ये भाई साहब अखा ही नहीं।
3: हर कोई तेरे वर्गा हुंदा
2: की? तेरे वर्गा मैं कितना काजल ला के
3: दस, तू बस कर। ए
2: तां बाकी गल्लां छड्डियां, ए दस मेरे तितली वाली मतलब आज सिर ते क्लंप जा खलाया।
3: मैं कह शायद मैं उड़न नहीं लग जा।
2: ओए तितली दा लाउण दी वजह ना, जे तू छत्तर मुर्ग दा लाउंदी फे भावें कोई ना कोई गल बनदी। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਜਣੀ ਵਜਣੀ ਹੈ।
4: ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ.com ਤੇ ਦੇਵਤਾਤਲਾ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼
5: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ।
6: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ
4: ਫੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇਵਤਾਤਲਾ 416-677-0609 416-677-0609
5: Culture of Punjab.
6: Culture of Punjab.
2: अच्छा देख, गल्लां बहुत हो गई इधर उधर दी, काम की गल आई है। काम की गल है कि आई वॉन्ट टू चेंज माई प्रोफेशन एंड यू नो एंड आई नो दैट के यू नो
3: बट दे डोंट नो
2: But they people know na? Yes, of course.
3: What?
2: That trick is ke tusi mainu aaj eh dassoge koi navi tarah de matlab professions dassoge jinnu main join kar sakda hu.
3: Okay.
2: And that profession would be very good for my pocket.
3: Achha.
2: Because I like the very much dollar in my pocket.
3: Achha.
2: Because always when I paying a thin my pocket.
3: Haan.
2: I always find khali my pocket.
3: पत्ते
2: चुगड़े लाने चौके
3: तेन हाथ जोड़ के अंदर सद्या भी गुरप्रीत जी आओ चाह पी के
2: जायराना मेरा
3: तू जा
2: ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜਰਾਨਾ
3: ਵੈਸੇ ਨਾ
2: ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਆ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ
3: ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਕੋ ਬਹਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਹੈ ਗਾਲਿਬ ਇਹ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ ਗਾਲਿਬ ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ
2: ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਿਗਾੜਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਜਾਣਾ
3: ਸੌਰੀ

0: हाँ दास भाई।
1: हाँ
0: की गल बात है।
1: चल पहले फेल हो गए।
0: कोई आइडिया मैं तेरा पसंद नहीं है।
1: चल मैं हुण जिहड़ा तेनू आइडिया दसना ना, मैनु एकदम याद आया, ओ सब तो बेस्ट आ।
0: बेस्ट आइडिया?
1: हाँ। तेनू ओ काम कर लेना चाहिए।
0: दसो दस।
1: तेनू सोना किन्ना क पसंद आ?
0: मैनु सोना इन्ना क पसंद है, इन्ना क पसंद है मैनु सोना